0: के गुड मॉर्निंग क्लास
1: सर
0: और सब्जेक्ट फॉर टुडे योश अबोंग इन अ सेंटेंस
1: अको
0: और सिगे ओरा इका
1: अबोंग दा इस उ कनात एस द बेस
0: ओके वेरी गुड ओशपा ओशपा
1: अको कप
0: और सिगे बुडोय इका
1: अमो कलदीरो इका वाप
2: Exciting!